सतगुरु शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवासु, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासु। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगासु। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उत्तम, जा आहर हर जियो परया। शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत

कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया सब निदान, दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा

दूजा अवर न कोई, तू कर कर वेख है जाने सोई, जन नानक गुरमुख प्रगट होई। आसा महला पहला तेतस।

साध संगत भज के वलनाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा जप तप संयम धर्म न कमाया।

रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारी है चुन चुन सत्र हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारी पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा।

की आत्मासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब

घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही तेरे

अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा आको कृपान अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जीती परनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेर जसेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं भूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करोरण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन

मिट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनिक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुबारा, काल फास्ते ताहे उबारा।

मेरा आधारो, साच नाम धार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु, जिस दिया एह वडे आईया, कह नानक सुनहु संतहु, शब्द तरहु प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

शब्द गुरु श्रवण है सुनियो, बिकते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख पणियो, लोहो होयो लाल, नदर सतगुर जद तारे, पाहण मानक करे, ज्ञान गुर कहू विचारे, काठ हो श्रीखंड।

याद अनाहत जुग जुग एको वेस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो संध्या दे दीवान

कोई न जाने तुमरा अंतर उचेते सगल समग्री तुम रह सूतर तारी तुम ते हो

विछड़ छोटा खावे सो सिख सखा बंदप है पाई जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले पाई विछड़ छोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे न पावे पाई फिर पछोतावे हर के दा सुहेले पाई जन्म जन्म के किलविक दुख काटे

या माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उभरे

0: सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम
1: के मन विश्राम रहो।
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै,
1: कै सिमरन दुख जम न सै।
0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै,
1: प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै।
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै,
1: प्रभ कै सिमरन अंधन जागै।
0: प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै,
1: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै।
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग,
1: सर्व निदान नानक रंग।
0: प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध,
1: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व।
0: प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा।
0: प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी,
1: प्रभ कै सिमरन दरगाह मनी।
0: प्रभ कै सिमरन हुए सुभला।

0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभु के
0: सिमरन निश्चल आसन
1: सिमरन कमल विलासन
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
0: सिमरह से जन जिनको प्रभु मया
1: नानक तिन जन सरणी पाया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद उपाए
0: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन जो जाते
0: हर सिमरन तारी सब तरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन की सगल अकारा
1: सिमरन में आप निरंकारा
0: हर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख।

0: दर्द दुख लता
1: नाम की महिमा संत रिद वसै
0: संत प्रताप तुरत सब नसै
1: संत का संग बड़ भागी पाई है
0: संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर

0: डरे
1: सात जना की सरनी परे
0: जिन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सात संग जा का मिटे अभिमान।

0: सगल कटा के अंतर जामी
1: अपनी गत मित जन हूँ आपे
0: आपन संगा प्रगराते
1: उस्तत दमते होए
0: नानक गवरना जान सकुए
1: सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: क्रिया मह उत्तम क्रिया
0: सा संग दुर्मत मल हिरिया
1: उत्तम मह उत्तम पला
0: हर का नाम जप हो जी सदा
1: सगल वाणी मह अमृत वाणी
0: हर को जस सुन रसन बखानी
1: सगल तानते ओ उत्तम थान
0: नानक जी का

0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे,
1: संग जाए तिस पर हरे,
0: चिंतन लेप उतारे तो ही, अंध कूप में पतत बिकराल,
1: कार ले प्रभ दयाल,
0: करतूत पशु की मांस जात,
1: लोक बेचारा करे दिन रात,
0: बाहर भेखंतर मल माया,
1: शिक्षना है कश करे शिपाया,
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान।

0: बेनती करै,
1: नानक तुमरी कृपा करै,
0: संग सहाई सुआवै न चीत, बलुआ के गृह भीतर बसै, दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत, पैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: विकार महालोक त्रोह,
0: याहु जुगत बिहानी के

0: ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध तन लाभ है
0: किसको सिमरत परम गत पाव है
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
0: जिसह त्याय सदा मने अंदर
1: जय प्रसाद गृह संग सुख वसना
0: आठ पहर सिमर हो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याय त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हरावे
0: जिसह त्याग कत वर लुभावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय
0: मन आठ पहरता का जस गावी जय
1: प्रसाद सबको मान
0: मुखता को जस रसन बखाने
1: धर्म
0: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म नानक पद से ती घर जाव है
1: आरोप कंचन देही
0: लिवलावो तिस राम स्नेही
1: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिंद्र ठाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: जय प्रसाद तुझको न पहुँचे
0: मन सा सिमरहु प्रभु ऊचे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: जय प्रसाद आपूखन पहरी जय
0: मन ते सिमरत क्यों वालस की जय
1: प्रसाद अश्व हस्त
0: मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना
0: राख प्रोय प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठत सत्य सहते आई
1: सहते आए जो एक अलख है
0: इहां उहां नानक तेरी रखे
1: जय प्रसाद करे बुन बोदान
0: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: तिस प्रभु को साथ साथ चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप।

0: जय प्रसाद सुख सहज जय बसना,
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
1: जय प्रसाद परम गत पाव है,
0: जय प्रसाद सुख सहज समाव है,
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर गत लागो हो,
0: गुरु प्रसाद नानक मन जागो हो,
1: जय प्रसाद तू प्रगट संसार,
0: इस प्रभु को मूल नमन हो विसार,
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप,
0: रे मन मूड तुता को जाप,
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
0: किसे जान मन सदा हजूरे,
1: जय प्रसाद तुम पावह साज,
0: रे मन मेरे तू ता शिवराज,
1: जय प्रसाद सबकी गत होए,
0: नानक जाप जपे जप सोए,
1: आप जपाए जपे सुनाओ,
0: आप गावाए सुहर गुण गाओ।

0: अश्वरी साध के संग मुखु जलहूत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रटे जो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा
1: साध संग सवोत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग वह बस पंचा
1: साध संग मत रस पंचा
0: साध संग हुए सब की रेन
1: साध के संग मनोर बैन
0: साध के संग न कतु हूं तावे
1: साध संग सद मन पावे
0: साध के संग माया ते

0: तेरा रंग को लागे तुलपवान
1: रंगानी का तीज
0: यो बसदा को खुद को चंदन लेप
1: रंगानी का यो बनाओ
0: नानक जो पाव का सह स्वभाव
1: रंगानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैं न लागे जला
1: रंगानी के मन हुए प्रकाश
0: जैसे तारू पर आकाश
1: रंगानी के मित्र सत सुमान
0: रंगानी के नही अभिमान
1: रंगानी ऊंचे ऊंचा
0: मैंने अपना है सब ते नीचा
1: रंगानी से जन पे
0: नान चिन्ह प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी
0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही चंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के ओए सो पला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम उधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद।

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रावे आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मान,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कत्या न जाए दाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बकाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।

0: निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगुन निस्तार है अष्टपदी मन में प्रीत निरंजन दर्श
1: रूप न पेक्षा नेत्र
0: संगहित
1: करन न सुन का हो की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: दूर पर साध देखिया पर हर
0: मन की वासना मन ते टरे
1: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मध्य को ऐसा परस
1: सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: कृष्ण की माया ते हुए पिन
1: कर्म करत हो वह नहीं कर्म
0: किस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: काहू बल की इच्छा नहीं बचा
0: केवल भगत कीर्तन संग राचा
1: मन तन अंतर सब गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप हृदय अवरह नाम जपावे
0: नानक वैष्णव परम गत पावे
1: गलती भगवंत भक्त का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते विनते सगला भरम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: संग पाप मल होवे
0: किस भगवती की मत उत्तम होवे
1: की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु परीत
1: के चरण हृदय
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।

0: ज्ञान कुछ पंडित को सदा आदेश,
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान,
0: चौवरना में जपे को नाम,
1: जो जो जपे जिसकी गत होए,
0: सा संग पावे जन को
1: कृपा अंतर और तारे,
0: पास प्रेत मुगत पाथर को तारे,
1: सर्व रोग का औखद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम,
1: धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम जिसने
0: दास दसंतन पाए तिन पाया।

0: जीवन मुक्त सो कहावै।
1: ऐसा हरक तैसा उसोग,
0: सदा अनंत तै नहीं वियोग।
1: ऐसा स्वर्ण तैसी असमाटी,
0: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी।
1: ऐसा मान तैसा अवमान,
0: ऐसा रंक तैसा राजान।
1: जो वरताए साई जुगत,
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त।
1: और ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ।
1: आपे कर्म करा बंजोग,
0: प्रभावै सोई फुन होग।
1: असरे आप हो रंग,
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग।
1: जैसी मत दे तैसा प्रगास,
0: पार ब्रह्म करता अविनाश।

0: प्रभु जी बहुविध अनेक प्रकार
1: राष्ट्रपति
0: कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार विहारी
0: कई कोट भए तीर्थवासी
1: कई

0: लिया सुनाई
1: आप उपदेश समझाया
0: आपकी रचिया सबके साथ
1: आपकी अपन विस्तार
0: सब कछ पुस्काव करने हार
1: शांत
0: नंतर एक को सोए
1: शांत नंतर
0: अपनी चलत आप करने हार कौतुक करे रंग आप।

0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार नष्ट रे। संत कै दुखन आर जा कटे,
1: संत कै दुखन जम के नहीं छुटे,
0: संत कै दुखन सुख सब जाए,
1: संत कै दुखन नरक में पाए,
0: संत कै दुखन मत होए मलीन,
1: संत कै दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत कै दुखन तान दृष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
2: संत संग निंदक बीते,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
2: संतन के दुखन काग जीव लवे,
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जले, संत कै दुखन ते सब जाए, संत दुखी का था को नाही,
2: संत पावे ता ओए विगत पाए,
0: संत का निंदक महा अत ताई,
2: संत का निंदक किंत करना पाए,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
2: संत का निंदक परमेश्वर
0: मारा, संत का निंदक राज ते हीन,
1: संत का निंदक दुखिया दीन,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को दुख,
0: संत की निंदा दुख में दुख,
1: नानक संत पावे ता उसका भी हर मोह,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का निमित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्यागे,
0: संत का

0: जिसका नाम रख कंठ परोए।
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए।
2: नानक बिगन न लागे कोए।
1: पुष्ट मन में करन अंकार।
2: कर मन मेरे सत व्यवहार।
1: निर्मल रसनामृत पियो।
0: सदा सुहेला कर ले।
1: नैनो भेख ठाकुर का रंग।
0: चरण चलो मार्ग गोविंद।
1: साथ संग बिन से सब संग। चरण चलो मार गोविंद।
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद।
1: कर हर कर्म श्रवण हर कथा।
0: हर दरगह नानक जल मथा।
1: बड़ पागी तेजन जग माहे।
0: सदा सदा हर के गुण गाए।
1: राम नाम जो करे विचार।
0: चेतनवंत गणी संसार।
1: मन तन मुख बोले हर मुखे।
0: सदा सदा जानो ते सुखी।
1: एको एक एक पहचाने।
0: हित बुत कियो सो जी जाने।
1: नाम संग जिसका मन मानिया।
0: नानक तिन्ह निरंजन जानिया।
1: पर प्रसाद अपने नव सुजे।
0: साध
1: संग हर हर जस कहत।
0: गर्भ रोग त्यो हर जन रहत।
1: अंधन कीर्तन केवल वख्यान।
0: कृष्ण मैं सोई निर्वाण।
1: एक उपज जन की आसा।
0: जिसकी कटिया जम की फसा।
1: सार्वम की जिस मन भूख।

0: नानक सोजन सदा अरोग।
1: ज्यो मंदर कौथा मैं थम्मन,
0: ज्यो गुर का शब्द मन असम्मन।
1: ज्यो पाखाण नाव चढ़ करै,
0: प्राणी गुर चरण लग्न निस्तरै।
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रगास,
0: गुर दर्शन देख

0: नष्ट भरी अविनाशी प्रभ मन मैं राख
1: मन की तू प्रीत आग
0: तिष्ठे परै नाही किछ कोए
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: गैर गंभीर सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा नदान दयाल बसंद
0: साथ तेरे की चरणी पाओ
1: नानक मने अंगाओ
0: मनसा पूर्ण सरना जोग
1: जो कर पाया सोई योग
0: हरण भरण जाका नेत्र फूल
1: मंत्र न जाने
0: अनद रूप मंगल सज्जा कै
1: सर्व तोग सुनिए कर्ता के
0: राज में राज जुग में जोगी
1: सब में तुभी सरगस्त में भोगी
0: त्याय त्याय भगत सुख पाया।

0: नाना विद किन्नु विस्तार नाना चलत करे खिन माहे नाना विद कर बनत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नानक करनाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगल पार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के समुद्र संसरण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नाम चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जा का सत स्थान
1: सत केवल प्रधान
0: सत सत जा की बाणी
1: सत पुरख सब माए समाणी
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बजाए तिसे सब पले
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत वचन सत उपदेश
2: सत दे जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे

0: की मतले
1: बेस बिस वे गुर का मन माना
0: जो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस रदा हर नाओ
0: अनेक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पैर पार ब्रह्म।

काहू बोल न पहुंचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित कर सत बलहारी सतगुर अपने एहो हर रस पावे जन कोए उस पुरख का ना

0: जिस धन को चार कुंट उठता वह
1: सो धन हर सेवा से पाव है
0: जिस सुख को नित बाच है मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस शोभा को करह पली करनी
1: आ शोभा पाज हर की सरनी।

0: क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया।
1: सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया।
0: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै।
1: गुर प्रसाद को बिरला तौ लख।
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै।
1: जन्म जन्म का टूटा गंढ।
0: गुर पूरै तत है बुझाया।
1: प्रभ अपना नानक जन ध्याया।
0: साजन संत करो एहो काम।
1: आम त्याग जप हर नाम।
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो।
1: आप जपहो अवरा नाम जपावो।
0: भक्त भाई तरिया संसार।
1: बिन भक्ति तन होसी सार।
0: गर्भ कल्याण सुख नित नाम।
1: बूढ़त जात पाए बिश्राम।
0: डबल दुख का होवत नाश।
1: नानक नाम जपहो गुणतास।
0: प्रीत प्रेम रस चाओ।
1: मान दान अंतर ही सुआओ।
0: नेत्रो पेख दर सुख हुए।
1: मन बिरसा साध चरण धोए।
0: भक्त जना कै मंथन रंग।
1: बिरला कोहु पावा संग।
0: एक वस्त दीजे करमया।
1: गुर प्रसाद नाम जप लया।
0: राखी उपमा कही

0: आप मित्र सुत पाई।
1: यह सर्व कला आप है पर बेन,
0: वेद कतेव कहा कोचीन।
1: जब अपने आप और तार,
0: तो सगन अब सगन कहा विचार।
1: जय अपने ऊच अपने आप नेरा,
0: कौन ठाकुर कौन कही है चेरा।
1: बिस्मन बिस्म वह बिस्माद,
0: नानक अपनी गत जानो आप।
1: जय अशाल अशेद अभेद समाया,
0: किसे व्यापत मा।

0: हुकम बूझ परम पद पाए
1: से ऊपर नहीं विचार
0: जाके मन बसया निरंकार
1: तोर पे निर्वैर
0: अनंदन पूज गुर के पैर
1: लोक सुखिए परलोक सुहेले
0: नानक हर प्रभ आप मेले
1: संग

0: दर्शन देखत उन्दर श्रेष्ठ
1: कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामे।

0: सो बाहर अनंत
1: काट काट व्याप रह भगवंत
0: कर्ण माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूरन प्रतपाल
0: कान तिन पर्वत है पाल।

0: कवन निकट कवन कहिए दूर,
1: आपे आप आप भरपूर,
0: गत जिसे आप जनाए,
1: नानक तह जाने आप बुझाए।

0: तारे
1: नानक निभि खेप हमारी
0: प्रभु के अस्तत करहो संत मेत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम
1: इस मन बसे सुहूत निदान
0: सर्व इच्छा ताके पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

0: जति जत तार सब सुविचार हजार क देख
1: श्री भगवान भजे बन भूपत एक रसी बनो एक न लिख
0: शुद्ध से बाहु दुवंत दुवाह ससाज सुनाह दुर्जान दलें।

0: सचर भूत भविख भवान जपेंगे।
1: जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे।
0: प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे।
1: साल सब हो प्रसन्न फिर जाग सतर सब है अब लोग चपेंगे।
0: मानव इंद्र गजेंद्र नराध जोंत लोग को राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजात कदान अनेक स्वंबर साज परेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्चे भगवंत फसे जम

0: कठोर हो मो सहाय,
1: दोष दोख से ले हो बचाई,
0: कृपा करी हम पर जग माता,
1: ग्रंथ करा पूर्ण सुख राता,
0: सकल दे को हरता,
1: दोष दोख अनुको

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ। सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है। कारणौ निध आवे ताए। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेठ शीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रिथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग पते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केश दान रहत दान बबेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान।

अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायता तार जीव श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है इन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान सतगुरु नितानिया दिता निउटिया दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ दसम पातशाह की आत्मक जोत शब्द स्वरूप धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने महान बख्शिश मेहरामत की अमृत वेले दे जग ने बख्शे अमृत वेले आप जी ने पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान होकर के दर आईया समूह संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते नदरो नदरी निहाल कीता आप जी का कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका रहमत सदका पावन हजूरी विच दरबार सजे सजे दरबार अंदर आप जी की अगाध बोध बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नितनेम बाणिया के पाठ संगति रूप विच होए गरीब नवाज आप जी की अमृत बाणी दे पाठ कर दें आप जी के दासरिया पासों सेवकां पासों हुई बेअंत बेअंत सूक्ष्म भुल आप जी ने खिमा कर देनी अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना सिर ते मेर भरिया हथ रख के सतगुरु जी बाणी शुद्ध स्पष्ट पढ़न सुनन अते विचारण दी दात प्रदान करनी गरीब नवाज अमृत वेले बेअंत संगतां ने आप जी के पावन चरणा की हाजरी भरी तिल फुल भेटा माया आप जी के चरणा विच भेटा की सतगुरु जी रहमत करनी समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर ते प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइया विच वाधे पाउणे घरां परिवारां विच सुख वरतौणी बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना विद्या दी दात गुरसिखी दी दात बख्शिश करके नवाजना सदा रहमतां दा हथ सिर ते रखना सतगुरु जी आप जी की कृपा दे सदका बेअंत संगतां वल्लों मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरिया गईयां सेवावां भेजियां गईयां समूह संगत दियां हाजरियां सेवावां दर ते प्रवान करनियां गुरमत अनुसार मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनियां बेअंत संगतां गुरु के लंगरां विच हव्या कमा रहियां हन सतगुरु जी कृपा करनी तन मन धन दे नाल कीती सेवा आप जी ने थाए पाउणी समूह संगतां नूं आपसी प्रेम प्यार इतफाक दे नाल अपने दर घर दी सेवा दे सदा योग बना लेना सतगुरु जी मेहरामत करनी गरीब नवाज अपने टहलियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा भावना सहित अपने दर घर दी सेवा दे योग करना हर मैदान फतेह बख्शिश करनी चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज आप जी के दर घर दे प्रीतवान परिवार बीबी हरलीन कौर ते समूह परिवार वालों सरदार अमरजीत सिंह जी की देह अरोगता वास्ते अरदास बेनती है सतगुरु जी आप जी का पावन पवित्र फरमान है रोगी का प्रभ खंडो रोग दुखिए का मिटावो सोग दे मां वाक का अनुसार आप जी ने कृपा करनी सरदार अमरजीत सिंह जी नूं पूर्ण देह रोगता दी दात बख्शिश करके नवाजना सच्चे पातशाह जी परिवार वालों उन्हां दी देह रोगता दे वास्ते आप श्री सहज पाठ प्रारंभ किए गए हैं आप जी ने सेवकां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बाणी पढ़न दी आप जी ने रहमत करनी सच्चे पातशाह जी बेअंत माया गुरु के पावन पवित्र चल रहे कार सेवा दे विच संगत वालों परिवार वालों पाई गई है सतगुरु जी आप जी ने कृपा करनी माया सफली करनी दरों घरों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजनिया गरीब नवाज बख्शिश किए भंडारिया विचों कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वर्तन की आग्या होवे जी करो कृपा पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करो अगले दीवान सजाउण दी आग्या होवे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

शरीर तक तिकृतवाओ जू जू फिर बटाइया ज्ञानी गुजता है साजू रसंतो का धर्म ग्रतवाओ त्रै तेरा जते का जोर गिरतवाओ द्वापर तपे का सुध

मन मुख खादे गुरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया बिन नाम जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या नेह फल जन्म गुवाया।

जिनको तुर लिख पाया महला तीजा कर ही मह अमृत पर पूर है मनमुखा साध ना पाया जियो कस्तूरी मृग ना जाने ब्रह्म दा परम पुलाया अमृत तज बिख संग्रह करते आप खोया।

पावन पंक्तियां अरदास भी बन जाए और किसी नू नहीं अपने आप नू सुनाइए। ओए मना आजा जुड़िए महाराज के नाम नाल, लै लाहा कर जाए हिरदे रूपी घर विच, इन्ना लाहा लै जा, इन्ना लाहा लै जा कि असल कर जाना सौखा बन जाए। इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेगा। जे मन का चैन लेना है ना, जे जिंदगी न्यूट्रल करनी है, जे जिंदगी एक रस करनी है, भज दौड़ तो बंदा बच नहीं सकता। पर महाराज कहंदे ने एक सौखा मार्ग है, नामे कहे त्रिलोचना मुखते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब। कहंदे ने सौखा तरीका है, कारोबार भी कर, किरत बिरत भी कर, पर रसना नाल ओदा नाम ले, एकाग्रता बनी रहेगी, चैन बनिया रहेगा। सच्ची प्यारे हो, जिन्हां दा मन सुखी है ना, जिन्हां नूं थोड़ा सबर संतोख आ गया, वो दुनिया विच सब तो अमीर है। कहो सारे महाराज नूं, स्क्रीन तुहाडे सामने है, भावें देख के गाओ पर गाओ जरूर।